0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਫੁੱਲ ਘਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।
1: अखियों से आए हाय को।

0: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरिया तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 0

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

एड्रेस भेज रहे हो, हाँ जी हाँ जी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो हाँ जी AM।

0: सिंग इन द हाउस।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02 9063 1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावना को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो वजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 18481.
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
3: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: सत श्री अकाल शुभोय बादशाह, ते तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी। हांजी
1: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं वधिया सोना तुहाडा दिन जा रहा होएगा, चेहरे ते होवेगी मुस्कुराहट, मन दे विच शुकराना, जेकर नहीं ते आओ सब तो पहला चेहरे ते खुशी लेके आइए ते कोशिश करो कि सारा दिन इस तरह के नाल ये खुशी चेहरे के उत्ते बनी रहे। दिन के दरम्यान बहुत कुछ इदा का होना जिन्हें ताड़ी ये खुशी ये मुस्कुराहट खोन की कोशिश करनी, खैर वो भी नाल नाल चलता रहना।

0: मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.
3: हां जी हां जी।

रेडियो हांजी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। अज 22 सितंबर 2026 मंगलवार दा दिन, भारत आस्ट्रेलिया ते दुनिया जहान दीआं खबरां लैके आए हां। पर सब तो पहला इंटरनेशनल न्यूज़ दे नाल शुरुआत करांगे। आओ जानदे हां, देखदे हां कि कुछ हो वापर रहा है दुनिया भर दे विच कौमांतरी खबरां दे और आस्ट्रेलिया दे नाल जुड़े खबरां दे। इस सैगमेंट दे विच इंटरनेशनल न्यूज़ तो शुरुआत प्रोग्राम न्यूज़ रूम दी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ IME एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: From India to Miami to the whole world, go ahead and slow it down, girl.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

बस रेंज रोवर, हाँ जी हाँ जी 1674, ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो।

0: हाँ जी, ओए हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी रेडियो।
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।
3: ओ देखो हो गया फायर, दौड़ होगी शुरू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, hello, this is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी हाँ जी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आई एम ई एडवाइजर अपनी माँ बोली विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: यार तू इतनी इतनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हांजी 1674 AM।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਫੁਲਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रभ नाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चवत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सदाखर कीने राम नाम एक अखर
1: जिनकै जीव सावै ताकी महिमा गनी न आवै
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक कुन संग मोहे उधारू
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभ सिमरत काछ बिघन लागै प्रभ कै सिमरन आंदन जागै
1: प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ कै सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हरंग
1: प्रभ कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला
1: श्री सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभ कै सिमरन तिसना बुझै प्रभ कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभ कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभ को सिमरै सी धनवंते प्रभ को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभ को सिमरै सी जन परवान प्रभ को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभ को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभ को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरै से मुख सुहावै प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभ को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभ कै सिमरन कारज पूरै प्रभ कै सिमरन कबू न जूरै
0: प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सह समानी
1: प्रभ कै सिमरन निचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभ कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जिन को रूप मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जमदल है तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कोट पापर हरे
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर
0: अनक माया रंग तिखना बुझावै हर का नाम जपत आगावै
1: ये मार्ग हो जात गीला ते हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नामन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परमगत पाइए
1: छूटत नाही को लखबाही नाम जपै ते पार पराही
0: अनक बगन जह आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै
1: अनक जून जन्मै मर जाम नाम जोत पावै विश्राम
0: हौ मैला मल कबहु ना धोवै हर का नाम कूट पाप होवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइए साधकै संग
0: जिह मार के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पैंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप तो गाम ते हर के नाम की तू

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Namaskar and welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Welcome to Being Bliss.
1: Thank you so much.
0: Last episode में हम लोग बात कर रहे थे कि पैसे का महत्व क्या है और चीजों का महत्व क्या है. फॉर एग्जाम्पल कार का या खिलौने का या बचपन में जो मैंने बात की थी पतंग का, कि हम पैसा कमाते कमाते खुशी ढूंढते ढूंढते वो चीज भूल जाते हैं जिससे पैसा नहीं खरीद सकता.
1: क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो खुशी के लिए हैं, तो देन इट वाज एक्चुअली कि खुशी पैसों से खरीदी जा रही थी.
0: और नहीं खरीदे और पैसा ना हो
1: तो वी थॉट विल नॉट बी हैप्पी ना.
0: तो बात
1: सही है ना. इवन व्हेन वी से कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बट इफ आई से पैसों से एक दो तीन चार चीजें खरीदी जा सकती हैं और जब ये चार चीजें आएंगी तो मैं खुश होंगी, सो इट इफेक्टिवली केम टू आई वाज बाइंग हैप्पीनेस.
0: दैट्स अ नाइस वर्ड.
1: इट इज इफेक्टिवली कमिंग टू दैट
0: लाइन, बाइंग हैप्पीनेस.
1: आई एम बाइंग हैप्पीनेस एंड व्हिच मेंट कि जब तक ये चीजें मेरे पास नहीं आएंगी आई एम नॉट हैप्पी. क्यों नहीं आ रही? मेरे पास पैसा नहीं है. तो पैसे कमाओ, चीज खरीदो, बी हैप्पी.
0: और जब तक ये सब नहीं मिलेगा आई एम बाइंग अनहैप्पीनेस.
1: वेरी गुड. सो माय डिपेंडेंसी चीजों के ऊपर एंड फिर इक्वेशन. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वेशन ऑफ लाइफ हैज टू बी सेट राइट. अगर बेसिक इक्वेशन राइट नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जीवन की यात्रा बीत जाए और फर्स्ट इक्वेशन राइट नहीं थी. क्योंकि जैसे आपने लास्ट टाइम शेयर किया, ये तो बचपन से सिखाया गया था. एक वीडियो गेम पेरेंट घर लेके आएगा, बी हैप्पी, नाउ यू आर हैप्पी ना, नाउ यू गॉट दिस, नाउ यू.
0: बाद में बोलते भी हैं इतना कुछ सब कुछ लेके आया, अभी भी दुखी है, अभी भी रो रहा है, और क्या क्या लाऊं. दूसरे बच्चों को देखो, कुछ नहीं मिलता है, उनके माँ बाप ये सब नहीं करते, मैं कितने महंगे महंगे खिलौने लाता हूँ, फिर भी रोता है.
1: एब्सोल्युटली परफेक्ट. तो इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन कब बनी? राइट फ्रॉम दैट एज. यहाँ तक कि कहीं लेकर गए, घूमने के लिए भी लेकर गए, हॉलीडे पर भी लेकर गए. सो इट वॉज डीप इनग्रेन्ड, वी आर गोइंग देयर so that we will be happy.
0: Sister, मेरी बेटी को एक छोटा सा बच्चा हुआ, वो रो रहा था, तो मैंने उसके पास खिलौना ऐसे टी टी टी किया तो वो उसका ध्यान उधर गया और वो रोना बंद कर दिया.
1: ठीक है.
0: अब मैं ये 2 रुपए का करता या 200 रुपए का करता, उसको एक्चुअली हुआ डिस्ट्रैक्शन और वो हुआ चंद सेकेंड्स के लिए. फिर वो जब उसकी आवाज से बोर हुआ फिर रोने लग गया.
1: दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन. आज हम खुशी के लिए अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस में भी लेकर जाते हैं. टीवी देखना, मूवी देखना, शॉपिंग जाना, हॉलिडे के लिए जाना. माय होल लाइफ इट्स सो स्ट्रेस, सो मच वर्क, आई एम सो अनहैप्पी, सो मच टेंशन, लेट मी गो फॉर अ हॉलिडे.
0: और जिस तरह ये डिस्ट्रैक्शन से बोर होकर वापस रोने लगा, वैसे फिर आपकी बात आ गई.
1: तो हमने क्या किया इन चीजों में भी? आप देखो, शाम

0: तो मन जो सोच रहा था प्रॉब्लम्स चैलेंजेस ऑफ द डे, किसी के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, ये सब मन पर चल रहा था. जब ये माइंड पर ये थॉट्स चल रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज आई वॉज क्रिएटिंग दोज थॉट्स. केम होम इन द इवनिंग, सैट इन फ्रंट ऑफ द टीवी. अच्छा, टीवी डिस्ट्रैक्शन फिर भी ठीक है. स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या आई. मूड ठीक नहीं है ना आज, टेंशन है ना, मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है ना, इस टाइम पे मैं एक सिगरेट ले लू ना, मेरा गुस्सा चला जाएगा.
1: एक सिगरेट ले लू, एक पिक्चर देखने चले जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद बार में चले जाता हूँ, बार के बाद डांस में चले जाता हूँ, सुबह 3 बजे घर आके फिर
0: और कुछ नहीं तो एक हॉलीडे पे चला जाता हूँ. ऑलवेज ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी, ये करूंगा तो खुशी. डिस्ट्रैक्शन जितनी देर हम वो करेंगे, हमारा मन हमारी प्रॉब्लम से हट जाएगा.
1: But,
0: खुशी नहीं आई है, वो वाली सोच बंद हो चुकी है थोड़ी देर के लिए. व्हाट इज अल्कोहल डूइंग टू मी, व्हाट इज अ सिगरेट डूइंग टू मी.
1: थोड़ी देर के लिए मन को
0: थॉट स्टॉप्स, इट बिकम्स नंब. माय कॉन्शियस लेयर ऑफ थिंकिंग हैज बिकम नंब विद अ सब्सटेंस. या शॉपिंग, आज बहुत सारे लोगों के लिए शॉपिंग एक डी स्ट्रेसर है. आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, लेट मी गो फॉर शॉपिंग. क्या करेगा शॉपिंग, शॉपिंग कुछ देर के लिए वो सारी जो सोच चल रही थी
1: ध्यान दूसरी तरफ लगा देगा,
0: डिस्ट्रैक्शन.
1: लेकिन छोटे बच्चे पे फिर हम चलते वापस, हमको बाद में पता चला है वो कुछ वो हिलाया, मैंने गिटार बजाया, मैंने चिल्ला के म्यूजिक लगाई, लेकिन उसको समझ में नहीं है. बाद में हमारे समझ में आया, छोटी सी बात थी, उसको नींद आ रही है और भूख लग रही है.
0: चीज कुछ और चाहिए, हम चीजें कुछ और दे रहे हैं. वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने दर्द से, यू नो फिजिकल पेन को भी आप देखो, अगर हमें थोड़ा भी दर्द है, आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ नी पेन, लेट मी डिस्ट्रैक्ट माई माइंड टू समथिंग एल्स. एक मूवी देखने बैठ जाओ, दर्द नहीं होगा उतनी देर. किसी के साथ बातें करने बैठ जाओ, दर्द महसूस नहीं होगा. यहाँ तक कि कोई काम जो एंजॉय करते हैं, कि हम जब काम कर रहे होते हैं हमें दर्द नहीं होता कहीं शरीर में, जब काम खत्म हो जाता
1: है, दिन के बाद घर आया, भूख लग रही थी, खुशी खुशी डिशेस बना बना के भाग भाग के दे रहे हैं, फिर जब हो गए खा पी के, अरे मेरे को तो यहाँ दर्द है.
0: एब्सोल्युटली,
1: हमारी शूटिंग में होते हैं हमको फाइट वाइट में मार लग जाती है, घर जाके जब शावर के नीचे जलने लगता है इधर उधर, अरे यार यहाँ चोट कब लग गई थी पता ही नहीं चला, यहाँ दर्द हो रहा है.
0: नाउ वेरी इम्पोर्टेंट, चोट थी उस टाइम भी, चोट थी,
1: महसूस नहीं हुआ,
0: मन उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ.
1: ओके,
0: द माइंड डिडंट गो टुवर्ड्स इट, सो इट डिडंट फील इट, बट द पेन वाज देयर, दर्द वहां पे था. इसी तरह अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मैं परेशान हूँ, मैंने कहा अल्कोहल ले लो, सिगरेट ले लो, टीवी देख लो, वी सेड दिस इज अ डी स्ट्रेसर. लेट अस अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ डी स्ट्रेसर. इफ इट वॉज अ डी स्ट्रेसर, मतलब वो वाली चीज मेरे स्ट्रेस को खत्म करती. मेरा दर्द वहीं का वहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, दर्द से अपने मन को थोड़ी देर के लिए हटा दिया. इज इट हेल्दी?
1: कभी कभी हटाते भी हैं और कभी कभी बढ़ भी जाते हैं,
0: लेकिन फर्स्ट इज इट हेल्दी अपने मन को दर्द से हटाना?
1: हेल्दी तरीके से हटाना हेल्दी है?
0: नहीं, इस तरह से सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करके अपने मन को दर्द से हटाना, विल इट बी हेल्दी?
1: नो.
0: व्हाई?
1: क्योंकि वो झूठा झूठा आर्टिफिशियल है ना.
0: नॉट ओनली दैट, सपोज मुझे जैसे आपने कहा घुटने में चोट लगी है, सुबह से शूटिंग चल रही है, सुबह में चोट लगी थी, रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो दर्द की महसूसता नहीं हुई, लेकिन रात तक उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो चोट उतनी देर में
1: बढ़
0: चुकी है. अगर हम अपनी जो चिंता है, परेशानियां हैं, जो वो थॉट्स हैं, अगर हम उन पे वर्क नहीं करेंगे, उनको ठीक करने की अटेंशन नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरी चीजों में लगाते जाएंगे, वो जो बीमारी है, वो जो दर्द है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा. बिकॉज इफ यू डोंट हील इट, इट्स इंक्रीजिंग, यू आर जस्ट टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम इट. सो ये जो सारी चीजें हैं,
1: जैसे वो बच्चे को कितना भी डिस्ट्रैक्ट करो, उसकी भूख और लग रही है, और लग रही है, उसकी जो
0: क्योंकि उतना टाइम
1: नींद उसको और आ रही है, और चिड़चिड़ा हो रहा है.
0: आपने क्या किया, आपने आधा घंटे तक उसको वो देने की बजाय
1: कुछ और ट्राई किया,
0: और ट्राई करते गए, और जितनी

0: जितनी देर बीच में टाइम गया उतना उसकी वो चीज जो चाहिए थी वो बढ़ता गया. सेम विद माई जर्नी ऑफ लाइफ. पेन है अंदर, दर्द है, मैंने कहा खिलौना ला दो, फिर उसके बाद बड़े हुए मोटरसाइकिल ले दो, ये खुशी देगा, ये खुशी देगा. अपने बेसिक थिंकिंग को उस पर वर्क नहीं किया तो वो जो थिंकिंग है, वो जो चोट है अंदर, वो जो दर्द है अंदर, वो तो दिन ब दिन बढ़ता ही गया ना. और फिर एक ऐसी स्टेज पे आके पहुंचे, कहते हमारे घर में अब सब कुछ है,
1: सुख शांति नहीं है, हैप्पीनेस
0: नहीं है, दर्द अभी भी वही है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम अपनी खुशी को जहां जहां ढूंढ रहे हैं. सी टू फाइंड हैप्पीनेस लेट अस फर्स्ट रिमूव ऑल दोस थिंग्स जहां हमने सोचा कि खुशी है. वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड. Instead of looking for where it is, first check all those things where it is not, where we thought it is. Objects, सारे objects, साधन,
1: addiction.
0: You know, जैसे आपने कहा सुख शांति, ये जो हमारे साधन है जीवन के, इनको भी आज हमने टाइटल क्या दिया, सुख सुविधा के साधन. ये सुख के साधन है हमारे, हमने कहा ये सुख के साधन नहीं थे, ये कम्फर्ट के साधन थे.
1: लेकिन सिस्टर पहले जमाने में सुख का साधन रेफ्रिजरेटर हुआ करता था 40 साल पहले, अब नेसेसिटी हो गया है.
0: 40 साल पहले भी वो तो सुख का साधन नहीं था,
1: कंफर्ट था.
0: कंफर्ट, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: नाउ एसेंशियल हो गया ना,
0: तो भी, लेकिन एसेंशियल आल्सो फॉर व्हाट? फॉर कंफर्ट. सुख और कंफर्ट, खुशी और कंफर्ट अलग चीज है. ये हर बार जीवन में हर चीज खरीदते समय जब हम दुकान में जा रहे हैं, आई हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट एम आई बाइंग एंड व्हाई एम आई बाइंग. लेट अस नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स आर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस.
1: एंड इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू बाय राइट नाउ?
0: एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, या लेट अस नॉट मेक देम आर स्टेटस सिंबल. वी हैव मेड ऑब्जेक्ट्स. मेरे पास फोन कौन सा है? फोन का काम है बात करने के लिए, लेकिन ये फोन होगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये ऐसे वाला फोन है इनके पास. तो मैंने ऑब्जेक्ट्स को,
1: आप फोन की बात कर रहे हैं, अभी मैं आ रहा था जब हैदराबाद इस शूटिंग के लिए, तो मेरा स्टाफ बोल रहा था साहब ये तो विवेक जी का स्टाफ लेकर जाता है बैग, आपको शोभा नहीं देता, आप जरा महंगा वाला बैग ले लो. मेरा स्टाफ मुझे सिखा रहा था क्योंकि एयरक्राफ्ट पे एयरपोर्ट लोग देखेंगे.
0: हाँ.
1: ये उतरेंगे तो कौन सा साहब ने कौन सा वो लाया, कौन सी घड़ी पहनी है.
0: एब्सोल्युटली. तो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या क्या बना दिया, साधनों को, चीजों को हमने क्या क्या बना दिया, और तब क्योंकि उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया, हमने उसको रिस्पेक्ट का तरीका बना दिया.
1: हाँ, जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा था, रिस्पेक्ट, प्रोटोकॉल, स्टेटस सिंबल. लेकिन मैं आज भी ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं फिर वहीं आऊंगा कि आज की दुनिया में जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग, शो ऑफ, शोमैनशिप की जरूरत. जब सब लोग ये करते हैं तो मतलब सारी दुनिया ही रॉन्ग होगी आपके.
0: अगेन, वी आर नॉट सेइंग रॉन्ग और राइट. इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स अबाउट क्लैरिटी. इट डजंट मीन कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो. It doesn't mean कि आप बड़ी से बड़ी गाड़ी, महंगे से महंगा मकान नहीं खरीदो.
1: आपको मालूम है हमारे दोस्त लोग क्या बोलते हैं, यार क्या इस आदमी का स्टाइल है, क्या रॉयल आदमी है, स्कॉच से कम तो पीता नहीं है, बीएमडब्ल्यू से कम तो उतरता नहीं है, पर्स भी लेता तो महंगे में महंगा, शर्ट भी लेता, क्या आदमी रॉयल है, क्या स्टाइल है उसका,
0: स्टाइल
1: तो है उसकी, क्या उसकी इज्जत करते. आते तो खड़े होते हैं लोग,
0: खड़े होते हैं,
1: कोई मैं पैजामा पहन के धोती पहन के चला जाऊं,
0: खड़े होते हैं. अगेन वी सॉ लास्ट टाइम, खड़े होते हैं.
1: तो
0: स्टाइल है, अग्रीड, ये रिस्पेक्ट नहीं है.
1: जो भी अच्छा तो लगता है ना,
0: अच्छा लगता है कि आपके लिए लोग खड़े हो रहे हैं, दैट्स फाइन. सी, वी आर नॉट, सी अगेन, वी आर नॉट सेइंग राइट और रॉन्ग, वी आर सेइंग
1: सोसाइटी में तो यू आर रिस्पेक्टेड, वेल एक्सेप्टेड.
0: एक्सेप्टेड, रिस्पेक्टेड, डिफरेंट वर्ड्स. एक्सेप्टेड मीन्स हाँ, इन्होंने बहुत अचीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया है. आपके व्यवहार, स्वभाव और संस्कार को एक्सेप्ट किया है. आपकी गाड़ी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आपको एक्सेप्ट किया. अगर आपने जब
1: आज मैं अपनी बेटी शादी में दू तो अच्छे स्वभाव और संस्कार खाली देख के नहीं दूंगा, ये देखूंगा, ये देखूंगा इसके कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने नौकर हैं. मैं खुद नहीं करूंगा तो आपको फिर मैं क्या बोलूं?
0: अब जब आप ये सब देखकर रिश्ता जोड़ेंगे।
1: बहुत बड़े संस्कृत के स्कॉलर, बहुत बड़े पंडित जो सबकी शादियां कराए, सबको डोनेशन करके घर में कुछ एक छोटी सी हंडी है उधर मैं बेटी दे दूंगा, इतने बड़े संस्कार वाला आदमी।
0: परफेक्ट। तो आपने डिग्री देखी, लुक्स देखी,
1: गाड़ियां देखी, मेरी बेटी कितना आराम करेगी वो देखा,
0: सब कुछ देखा,
1: नौकर है या सारे दिन किचन में बैठे रहेंगे, सब देखूंगा ना,
0: सब देखकर शादी की ना,
1: देखकर ही करेंगे ना।
0: फाइनली जो रिश्ता जुड़ेगा दो लोगों के बीच या दो परिवारों के बीच जो रिश्ता जुड़ेगा, और कितना सुंदर वो रिश्ता होगा, कितना उनका आपस में संस्कारों में तालमेल होगा, कितना सुखी वो परिवार होगा, कितना प्यार उन दो लोगों के बीच में होगा, गारंटी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्स एंड द बंगलोज यू सॉ इन द बिगिनिंग?
1: नहीं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये रिश्ता दुकान में नहीं खरीद सकते, पैसे से नहीं परचेज किया जाता, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
0: अब यही अगर हम थोड़ा सा स्वभाव संस्कार देख लेते उस टाइम, हम किस से शादी करते,
1: ध्यान में क्यों नहीं आती ये बात है?
0: क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइफ, अगर मेरी बेटी जिस घर जाएगी वहां अगर गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, उस घर में अगर सारी चीजें होंगी तो मेरी बेटी खुश रहेगी?
1: नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इतने ऐसे परिवार मालूम है जहां पर डिवोर्स ही हुआ है।
0: इट्स नॉट ऑल्सो कि अगर ये सब
1: नहीं, रिचनेस देख के किया, पैसा देख के किया।
0: इट्स नॉट कि रिचनेस इज नॉट राइट, रिचनेस इज ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल टू हैव मनी, वेरी नाइस, बट डोंट से मनी फॉर हैप्पीनेस। पैसा होना आपके पास है, इट्स ब्यूटिफुल, आप दुनिया की सबसे महंगी चीज खरीद सकते हैं, ब्यूटिफुल, लेकिन खरीदते समय ये अपने आप से नहीं कहना कि दिस ऑब्जेक्ट इज गिविंग मी हैप्पीनेस एंड रिस्पेक्ट।
1: एक छोटे मोटे शायर ने एक लाइन बोली थी, उसने बोल दिया, पैसा तो खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम तो खुदा से कम भी नहीं। तो उसने इक्वेट कर दिया पैसे को खुदा से,
0: क्योंकि
1: हिंदी में भी बोले लक्ष्मी पूजा, तो ऐसे ही सब बन गए, मतलब इतनी।
0: लेकिन अब चेकिंग करनी है ना, अब अपने जीवन की चेकिंग करनी है। अगेन, सब लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट गेटिंग इट टू दैट, लेट मी सी माई क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, आई हैव एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय,
1: बट
0: वाई एम आई नॉट हैप्पी टूडे? Each of us can sit back and ask themselves, I have everything that money can buy.
1: इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिस्टर मेरी गुरु के पास मैंने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को झुक कर माथा टेक कर भीख मांगते हुए देखा है अपनी आंखों से कि मुझे गुरु जी मुझे सुख शांति दो, मैं खुश नहीं हूँ। अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं, सब कुछ रखते हुए खुश क्यों नहीं है? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि जो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब दरिद्रता में है, जीरो मनी में है, उधार में है, परेशान है, उसके बाद भी तो नहीं है ना सुख शांति?
0: इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, विच मीन्स ये दोनों चीजें अलग अलग हैं।
1: दोनों एक्सट्रीम्स हैं?
0: नहीं, एक्सट्रीम्स नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं।
1: तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दुखी है?
0: ये दो अलग चीजें हैं, फर्स्ट लेट्स लुक एट इट, ये दो अलग चीजें हैं। एक चीजें हैं जड़, सारी जड़ चीजें हैं जो पैसा खरीद सकता है, सारी मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैंने इस जीवन में की, वो एक साइड है, लेट्स टेक इट एज वन साइड। दूसरी साइड है माय होल लिस्ट ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, माय वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिसमें आपने जैसे कहा सुख शांति, लव, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये एक लिस्ट है। वी आर नॉट सेइंग कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं होगी, या जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुशी होगी। इट इज जस्ट दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स।
1: अच्छा,
0: ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये ना सोचें कि ये वाली लिस्ट आ जाएगी तो ये वाली भी लिस्ट आ जाएगी। हमने सिर्फ वो छोटी सी की गड़बड़। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
1: हमारी। कौन सी लिस्ट, प्लीज बताइए?
0: एजुकेशन, अचीवमेंट्स, all the products that I have bought, this is one list. Happiness, love, respect, peace of mind, this is one list. We just have to remember, these are two डिफरेंट लिस्ट्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमने क्या कहा, ये आएगा, चीजें आएंगी, अचीवमेंट आएगी, प्रोफेशनली आई विल डू वेल, अचीव करियर में मैंने बहुत ज्यादा किया, तो ये लिस्ट अपने आप आ जाएगी, खुशी आ जाएगी, लोग मुझसे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमने कहा ये लिस्ट आएगी तो ये वाली लिस्ट अपने आप आ जाएगी। तो हमने अपने जीवन में मेहनत सारी कौन सी लिस्ट पे की, इस वाली लिस्ट पे। यू नो इट्स लाइक हैविंग टू गार्डन्स, एक हमारे घर के आगे, एक हमारे घर के पीछे। तो ये दो गार्डन है हमारे जीवन के, दो गार्डन है। एक है भौतिक, जिसको आज लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मटीरियलिस्टिक मीन्स मैटर, एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड मी, मटीरियलिस्टिक। वन इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, व्हाट इज द स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ, एवरीथिंग दैट इज इनसाइड मी। मटीरियलिस्टिक, एवरीथिंग आउटसाइड अचीव्ड, स्पिरिचुअल एवरीथिंग इनसाइड, राइट। तो कहते हैं मटीरियलिस्टिक लाइफ जब से हो गई ना, तब से खुशी गुम हो गई। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। किसी के लिए कहेंगे ये बहुत मटीरियलिस्टिक है, मीन्स इट्स नॉट राइट। नो, इट्स नॉट ट्रू। इट्स गुड टू बी मटीरियलिस्टिक, यू शुड हैव एवरीथिंग। आप जितना खरीद सकते हैं, यू शुड हैव एवरीथिंग विद द क्लैरिटी। ये एक गार्डन है मटीरियलिस्टिक, ये दूसरा गार्डन है सुख शांति खुशी। हमने क्या कहा, इस गार्डन को पानी देंगे
1: तो ये अपने आप ग्रो हो जाएगा,
0: अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो हमने अपने दिन के 24 घंटे किस गार्डन में बिताने शुरू कर दिए,
1: मटेरियलिस्टिक,
0: ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है,
1: उसको हमने इसका रिजल्ट मान लिया, ये करने से वो
0: ये हो जाएगा। हाँ, हमने सोचा इधर मैं पूरा दिन बिताऊंगा ना इस गार्डन को सुंदर बनाने में, तो मेरा ये गार्डन तो अपने आप हो जाएगा, लोग मुझसे प्यार करेंगे, खुशी आ जाएगी, विश्वास होगा, रिस्पेक्ट मिलेगी सबसे। हमने ये गार्डन पर ध्यान नहीं दिया,
1: क्या करें बात।
0: अब रिजल्ट क्या हुआ, हमारा ये गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया है। आज आप देखो हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा आगे वाला गार्डन तो बहुत सुंदर हो गया। जिस गार्डन पर ध्यान दिया, दिस इज अ लॉ, स्पिरिचुअल लॉ, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे, आपकी पूरी ऊर्जा वहां जा रही है, जहां आपकी ऊर्जा जाएगी वहां अपने आप चमत्कार होने लगेंगे। आज हमने चमत्कार कर दिए हैं दुनिया के अंदर, हम स्पेस में जा सकते हैं, हम सागर की तलों में जा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। अटेंशन वेंट देयर, एनर्जी वेंट देयर, वी क्रिएटेड मिरेकल्स। अपने अंदर खुशी क्रिएट करनी है, शांति क्रिएट करनी है, वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा ये करेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा, तो उस गार्डन पे अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन डेंट को एनर्जी डेंट फ्लो, और वो वाला गार्डन क्या हो गया।
1: क्या करेंगे, जो आप बोल रहे हैं अब इस वक्त सुनते हुए अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं देखूं तो द नंबर वन प्रोड्यूसर्स, नंबर वन एक्टर्स, नंबर वन डायरेक्टर्स, नंबर वन म्यूजिक के लोग अकेले घर में बैठे रहते हैं, जब उनकी पिक्चरें नहीं चलती फेल हो जाते हैं, और जब पैसा नहीं कोई जहां चलता वहां जाते, तो उसको लोग दैट इज देयर हैप्पीनेस, तो लाइफ,
0: तो वो ठीक नहीं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट इज द फ्रंट गार्डन।
1: और जब घर पे लोग आना बंद करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटो खींचना आपके छोड़ देते हैं, आपके पास कोई आके आर्टिकल्स आपके नहीं लिखता है, तो इधर के गार्डन में है कि कौन से गार्डन में है, वो कहां जाए,
0: पीछे वाला गार्डन।
1: इसलिए देखिए पॉन एंड ऑन उसी को पानी डालते रहते हैं,
0: उसी को पानी डालते रहते हैं ना, और पीछे वाला गार्डन सूख रहा है ना।
1: पीछे वाले गार्डन को कोई देखता है क्या?
0: देखता नहीं ना,
1: मैं खुद नहीं जाता वहाँ।
0: हाँ, तो अब पीछे वाले गार्डन को नहीं ध्यान दिया, तो फिर इवन व्हेन आई हैव एवरीथिंग, व्हाट डिड आई से, यू सेड आई एम नॉट हैप्पी। एंड देन बाय चांस, जैसे आपने कहा, अचीवमेंट में भी अगर कुछ कम हो गया, तो जब आगे वाला गार्डन सूखा हुआ थोड़ा सा मिला,
1: आगे सपोजिंग जब खाना पीना है सब खत्म हो गया, तो पीछे जो हमने स्टॉक पे रखा है नहीं कुछ के संभाल के, वहाँ अपन उस गार्डन में बैठ के आराम करें,
0: नहीं कर सकते ना?
1: अगर उस गार्डन में मैं राजा हूँ, तो यहाँ के राजा में इतना राज हार भी जाऊँ, तो ये राज उसके हवाले करके वहाँ वापस राजा बन सकता।
0: ब्यूटीफुल ना। अब इसमें देखो, आगे वाले गार्डन में मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट, पीछे वाले गार्डन में खुशी कॉन्फिडेंस, खुशी कॉन्फिडेंस पावर ट्रस्ट रिस्पेक्ट, ये मेरा पीछे वाला गार्डन है। मेरा आगे मटीरियल गार्डन मुझे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट नहीं दे सकता है, बट स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मेरे मटेरियल गार्डन को स्ट्रॉन्गर बना सकता है।
1: और मटेरियल गार्डन नष्ट भी हो जाए तो वह सुख शांति मुझे दे सकता है।
0: आई एम स्टिल हैप्पी।
1: हाँ, सुख शांति स्पिरिचुअल गार्डन दे सकता है, ये गार्डन सुख शांति
0: खुशी
1: नहीं दे सकता,
0: क्योंकि ये बाहर है,
1: थोड़ी समझ,
0: ये चीजें बाहर है। स्पिरिचुअल अगेन डजंट मीन सम अदर थिंकिंग, यू नो, सम पीपल से ओ व्हाई डिड यू गो इन द स्पिरिचुअल लाइफ, इट्स नॉट अ डिफरेंट लाइफ, इट्स
1: स्पिरिचुअल, मतलब ये तो नहीं ना माला लेके सारा दिन जपते रहना।
0: एक है जो चीजें बाहर है और एक है वो चीजें जो अंदर है। खुशी एक फीलिंग है, लव फीलिंग है, रिस्पेक्ट फीलिंग है, कंटेंटमेंट फीलिंग है, विल पावर फीलिंग है, ट्रस्ट फीलिंग है। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, आत्मा की ये सारी जो फीलिंग्स है ये अंदर है। नॉलेज, अचीवमेंट, डिग्रीज, पोजेशन, प्रॉपर्टी, रिलेटिव्स बाहर है।
1: ये फीलिंग्स है और वो फीलिंग है।
0: हाँ, स्वीट। हाँ, yes.
1: इससे खोखलापन आता है, इससे भरता जाता है।
0: उससे खोखलापन भी नहीं आता। सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है।
1: खोखलापन नहीं बोल रहा, उससे वॉइड जो आप बोल रहे थे, सब कुछ रखते हुए भी अशांति नहीं आ रही है।
0: right.
1: मेरे गुरु के पास लोग जाते हैं, पांव पड़ते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे को सुख शांति नहीं है, उसको मैं शब्द को खोखलापन
0: या
1: वो वॉइड, वो खालीपन, वो जब बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ फीलिंग बता रहा हूँ, वहाँ फीलिंग है।
0: लाइक यू सेड कि सब कुछ है, मतलब मेरा सामने वाला गार्डन इज फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग मतलब अब कोई रह नहीं गई चीज जो मैं उस गार्डन में ग्रो करूं, सब कुछ आ गया। अब मैं पुराने वाले, पीछे वाले गार्डन पर गया, क्योंकि उसको मैंने पूरी तरह से क्या कर दिया था, निग्लेक्ट कर दिया था। वहां क्या आ गया, जिस चीज पर अगर गार्डन पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा,
1: वो क्या बोलते हैं, कांटे वाले झाड़,
0: जमीन बंजर भी हो सकती है, बहुत कुछ हो गया। तो जीवन कैसे हो गई, नीरसता, दुख, गुस्सा,
1: चुभने वाले कांटे वाले मैं पेड़ बन जाता हूँ, लोगों को चुभता।
0: अब ये भी नहीं करना है कि ये गार्डन से ध्यान हटा के इस गार्डन में लग गए तो वो वाला गार्डन सूख जाए। जीवन की इक्वेशन बहुत राइट होनी चाहिए। ये गार्डन भी इम्पोर्टेंट है, ये गार्डन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 24 घंटे अगर इस गार्डन में बिताते हैं, वॉट ऑल आई हैव टू डू द होल डे, आई हैव टू डू ऑल दिस, 24 घंटे अगर ये गार्डन में बिताते हैं, सिर्फ सारा कुछ बाहर करते हुए, इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ हाउ आई एम बींग वाइल डूइंग, फर्स्ट वी सेड वेन आई डू इट आई विल बी, नाउ वी गोइंग टू चेंज इट लिटिल बिट एंड चेंज द वे वी आर गोइंग टू लिव, हाउ आई विल बी वाइल डूइंग इट। एक था ये होगा तो देन आई विल बी हैप्पी, नाउ वील गो ऑन अ जर्नी एंड से व्हाइल आई एम हैप्पी नाउ आई एम डूइंग दिस, मतलब इस गार्डन का ध्यान रखते हुए अब मैं इस गार्डन का ध्यान रखूंगा। तो मेरा जो ये गार्डन है, माय इंटरनल गार्डन, इफ दिस इज ऑलवेज स्ट्रांग, तो अगर मेरा जो आउटर गार्डन है ऑफ अचीवमेंट्स, उसमें अगर कभी थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ भी जाए, मेरी खुशी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा पीछे वाला गार्डन हमेशा स्ट्रांग है, अब इसमें सैटिस्फैक्शन इस बात की है कि जो ये बाहर वाला गार्डन है ना, ये परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये पीछे वाला गार्डन है ये सिर्फ एक के कंट्रोल में है, परिस्थितियां और लोग मेरे कंट्रोल में नहीं है।
1: एक के कंट्रोल में मतलब
0: मेरे अंदर का जो गार्डन है वो किसके कंट्रोल में है?
1: एक मीन्स
0: में आई
1: सिस्टर, एक मीन्स मैं, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, मुझे इस पे आपसे बात करना है, मैं अगले एपिसोड में जरूर करूंगा, और इस बार समय बीतता जा रहा है तो धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार एंड ओम शांति।
0: ओम शांति।
2: टीवी, शॉपिंग, हॉलिडे, स्मोकिंग और एल्कोहल इज नॉट अ डिस्ट्रेसर, इट इज ओनली अ टेम्पररी डिविएशन फ्रॉम द पेन। The emotional wound of stress, anger or hurt gets deeper because instead of healing it, we are distracting our mind away from it. Achievements and possessions can get us regard, not happiness and respect. Regard is an outer gesture and respect is a feeling for what the person is. Possessions give us comfort, Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness, peace and love is our internal creation and can be created irrespective of external comforts.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: जी
1: कल फिर कितने गए ही साइकिल लेके?
0: मैं असी साडे घर दे बाहर गेड़े लाए,
1: अच्छा घर दे बाहर ही गेड़े लाए, ओके
0: एक ट्रैक
1: अच्छा
0: ट्रैक
1: अच्छा ट्रैक ते गेड़े लाए,
0: घर दे बाहर जेड़ा ट्रैक हैगा।
1: ओके ओके गुड, फन होया फिर?
0: हां जी।
1: वेरी नाइस, ते की ले आयो फिर अज?
0: फिर जदों असी घरे पहुंच गए उहदा मीह पैण शुरू हो गया।
1: ओ तो चक्कर ज्यादा चढ़ गए ना, तुसी बदल ज्यादा लपेट ले, तुसी चक्कर ला ला के है ना, तुही बदल नचोड़ते
0: तुही। अच्छा पुराना किंडर देख के आई सी।
1: अच्छा पुराना किंडर, ओके पेंट कर दिए पुराने नू?
0: हाँ?
1: पेंट कर दिए पुराने किंडर नू?
0: नहीं।
1: हाँ उधर रहन दिए?
0: हाँ जी, क्योंकि ऑलरेडी चेंज होया।
1: अच्छा उधर ही चेंज हो गया, ओके चलो फिर रहन देने हैं, फिर तुही कहीं दे उधर रहन देने हैं।
0: ओके
1: की ले आयो फिर अज?
0: एक बोली।
1: ओके केड़ी केड़ी?
0: मासी नेता मेरे खादे, मासी नेता मेरे खादे, पुआले खादे दोदे, पुआले खादे दोदे। इन्ने की नचना खड़ खड़ कर दे
1: गुड, इन्ने की नचना खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़ खड़खड़ कर दे गुड
0: की नचला।
1: वीर जी रौन की बंदा है?
0: हां जी।
1: है फन कर दा?
0: हां जी।
1: तो नेक्स्ट बारी के दिया
0: लाइक मम्मा
1: लाइक
0: नेक्स्ट वीर जी हैगा,
1: नेक्स्ट वीर जी हैगा। ओके वीर जी नु कहो भी भंगड़ा भोंगड़ा पा के ते जरा नेड़े आ जाओ। है
0: गल करदे पे सी तेरे तो नाल कोई बैठा?
1: नहीं आई थिंक मैं एशली नाल गल करदा ही। करो प्राइवेसी रहिंदा करो तुसीं थोड़ी जी। ओके तुसीं गल्लां सुन के ते फिर दस्यो ना किसे नूं। ओके ओके सीक्रेट रखना तू ही, मेरा सीक्रेट रखोगे तो फिर मैं ताड़ा सीक्रेट रखूंगा।
0: ओके ते गड्डी बलिया खराब ने।
1: अच्छा गड्डी किथे खराब होगी आज?
0: मेलबर्न च।
1: हैं किथे?
0: मेलबर्न च।
1: मेलबर्न च ओके ओके ओके पता नहीं हुण मेलबर्न च क्यों गड्डियां खराब होंदियां, सिडनी च ते तुसीं दस्या ही, मेलबर्न च क्यों खराब
0: होंदियां? सर्विस नहीं करदे।
1: आहां अच्छा मेलबर्न वाले भी नहीं करदे?
0: हां जी। ओहो अब पेट्रोल नहीं पादे।
1: ओहो पेट्रोल तो बिना फिर किदां चल पैंदियां?
0: ओ लेक्सस वी
1: है।
0: हम इलेक्ट्रिसिटी है।
1: अच्छा इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। अच्छा बत्ती वालियां गड्डियां वा?
0: हां जी।
1: ओके ओके ओके ओके ठीक है, ये यार करना पैना कोई हल है ना, जड़ियां गड्डियां खराब होंदियां इना करके ट्रैफिक बढ़
0: जांदा। तेल वाले गड्डियां पसंद ने।
1: अच्छा
0: बूम बूम।
1: अच्छा तो हो बल्ले तुही ते फिर वीर जी पूरी मतलब डूम बूम कराउंदे हो ना?
0: हां जी।
1: गुड की सुनाओगे फिर?
0: मम्मा खादे।
1: हैं
0: मम्मा कोई होर नहीं खादा।
1: हैं केड़ी चीज है जिहड़ी ओ केड़ी चीज है जिहड़ी मैं खांदे पर कोई होर नहीं खांदा?
0: नहीं ओ नहीं है।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हाजी लिसनर्स।
4: Still Bangles.

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Thinking of building your dream home? Make it truly grand with Kaplan Homes Ultimate Prosperity Package. Get top 10 grand upgrades in one unbeatable package price, including 3-meter ground floor ceilings, 2.7-meter top floor ceilings, large porcelain tiles, premium timber look flooring, grand feature doors, stylish black finishes, and smart keyless entry. Plus, a lifetime structural guarantee. Limited time only. Visit Kaplan Homes online or one of our display homes in Sydney. TNC Supply. License 184-812.
2: तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल्ड वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
5: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
5: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
5: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
6: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
7: हां जी रेडियो